0: के प्रभु ने हमें धरती पर सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और हम पर भरोसा किया है कि हम इसे पूरा करेंगे, कि हम उनकी आवाज और उनके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, चाहे हमारे आसपास के हालात कैसे भी हों, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी कि हम सब मिलकर जाएं और सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु ने हमें अलकर्मा चैनल पर सबसे शक्तिशाली अरबी कार्यक्रमों का सौभाग्य दिया है जो धरती पर सबसे शक्तिशाली सेवकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। सुसमाचार प्रचार के कार्यक्रम, अपोलोजेटिक्स में कार्यक्रम, परिवार के लिए कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम, अलग अलग चर्च, अलकर्मा में 41 से ज्यादा चर्च हैं जो अलग अलग अलकर्मा चैनलों पर प्रसारित होते हैं। प्रभु ने हमें ऐसा करने की क्षमता दी है। आज प्रभु हमें एक साथ होने का सम्मान दे रहे हैं। आप और हम उनकी आवाज को अलग अलग भाषाओं में 2 अरब लोगों तक पहुंचाई जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है। शायद वे सोचते हैं कि वे हत्या करके या कई अन्य अलग अलग तरीकों से प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन आज हमारे पास समाधान है, हमारे पास संदेश है, उद्धार का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसका शैतान हर तरह से विरोध करता है। वह हमें हमारी भूमिका से भटकाने की कोशिश करता है जिसे हमें निभाना चाहिए। वह हमें पारिवारिक समस्याओं से रोकने की कोशिश करता है, आर्थिक समस्याओं से, दुनिया भर के युद्धों से, और इस समय लोगों को प्रभु के संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने आज हमें, आपको और मुझे ये सम्मान दिया है कि हम इस संदेश को अलग अलग भाषाओं में ले जा सके। और आज हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अलकर्मा ऑन एल नेशंस, जिसके जरिए हम दुनिया भर के अलग अलग लोगों तक अलग अलग भाषाओं में पहुंच सकते हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज वह हमें उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने हमें आज्ञा दी है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आइए हम सब मिलकर अलकर्मा ऑल नेशंस चैनल शुरू करें। और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक ही आवाज, मसीह की आवाज, अलकर्मा ऑल नेशंस। مبارك اسم الرب طبعا فهمت كل كلمة مش كده طب ايه اللغة اللي كنا بنتكلم بيها دي
1: هندي
0: ده هندي مظبوط بشكر ربنا جدا لأجل حضراتكم لأجل محبتكم لأجل صلاتكم لأجل دعمكم اللي بيخلونا نقدر نعمل كده بالأجهزة والتكنولوجيا بشكر ربنا ربنا بيفتح طريق زي ما بقول كل يوم زي ما أيام كان في عهد المسيح كان الإمبراطورية الرومانية فتحت وعملت طرق عشان تسهل وصول البشارة وحدد اللغة دلوقتي قبل ما جاء المسيح التاني ربنا بيعمل طرق تانية نقدر بيها نوصل الرسالة لكل العالم وربنا باركنا في قناة الكارما بأحسن وأروع الخدام على وجه الكرة الأرضية اللي نقدر ناخد الرسالة بتاعتهم ونوصلها لأحبائنا المحتاجينها في كل مكان بلغات مختلفة ده لغة هندي امبارح استمعنا للتركي أو امبارح استمعنا للفرنش قبلها بالانجليزي قبلها بالعربي وممكن اخونا المخرج كده ينططنا ما بينهم يعني ممكن يورينا الاصل انا مسجله بالعربي بس بشكر ربنا جدا وبشكر حضراتكم توصل الرساله باستخدام التكنولوجيا باستخدام الاجهزه باستخدام الارتفيشال انتليجنس نقدر نعمل حاجات كتيره واللي جاي اعظم باذن المسيح
1: أمين.
0: الى يوم مجيء الرب يسوع وتنتشر الرسالة وتوصل الرسالة ثم يأتي المنتهى
2: أمين
0: خلاص هو ده اللي الرب بيقوله عندما تصل الرسالة لكل أنحاء العالم للناس يعني احنا مثلا التارجت بتاعنا أحبائنا وإخواتنا المسلمين اللي في اللغة العربية أقوى البرامج الأبولوجيتيك